ते यदि शिशा के ते लाती ना खोच को कि तस अनगे ए आज यदि ला कुरिया शे ए आज तो ते गवर्नमेंट ए या चत हज अनगे ए यदि अल्लाह मिलिया जो तब आ तीन दिन नेज ना तीनों अश्ला तीन इत ए गो ए या पे ना अंत हज ती वी बचाता ए यदि ना